दुवैजनाले राम्रोसँग होमवर्क गरेर आउने है। बाय बाय। ओहो, छाउरा लामा नाला बुफु थामेको जिम।

0: WFM 89.6 MHz.
1: 89.6 MHz.
0: MHz.
2: हेलो रोहिणी, के थाहा खबर? आज त तिमी साह्रै राम्रो देखेकी छौ त, थाहा छ म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु।
3: मिस्टर अजय, हे दीपान, रोहिणी से मेरी हो मेरी।
2: ठिक छ रोहिणी, हामी दुईजनामा जसलाई मन पराए नि हामी रिसाउँदैनौ। के तिमीहरू 15-20 वर्ष कुर्न सक्छौ?
3: ओके रोहिणी,
2: बाई।

खुशी समझी थी ते मन आंसू बनाई धरी गयो मन ती मायाले आंसू बनाई धरी गयो मन।

0: Lumbu FM 89.6 MHz.
1: अब रङ खेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो यसु रङला बजब लबरी हाला जयमसी तथा नमस्कार लासु थ्याफुल्ला कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ तथा जीवनला क्षण गदेरी अङ्क तेह्री रङ स्वागत मुला न वियोग तामाङ राङ्ला लुई चुरङमा दुई हाला जब राङ्दा न्यानमुलाकी राङ फेरि बिलाप क्यार आक्रमण ताबन मुला राङ्दा तिगै गलत ताबा आरोप लगब लगे राङ्दा घेराब लाबा मुला थेनी गदी मध्ये हालाइसे एन राङ्ला चिन्ताला परिस्थिति रे वास्तवी तिगा ताजी बिसी गोबर दुई तेजीबा आरे थेनी गदी से राङ्दा दोष पिनबार निर्णय लामा मुला थेन दे थेनी गदे रङला पछला कथा नेनबरी इच्छुक आरे तिनीगा रङ दिदेन तिगा साझा लबरे सेमुल विषम रङला पछरी हाइमा दमन हालाई न हालाई ताला जो रङ फिरि विश्वास लबरी देन रङला बेनन लडाई कदे छेबरी हाइमा दमन बफदार चिमोला रोला मिन यसु ख्रिस्ट हिन्बा पहिलो योहन्ना दुई अध्यायला एक नाला कोला गदे एनी गदे से पाप थलगै बिसी नै चुताम एनी गदेला लागरी ब्रिवन मुला तर चुदे खालै से पाप लनोन लजी बिसम याङला लागरी परमेश्वर देन छ्याम बिन्ती लसी पिन्बा परमेश्वर से मनमा अनुसार ब्रबाई यसु ख्रिस याङ देन छ्याम मुला जब हाजीबाई मिदा अपराधला आरोप लगाप ल मुला हाइमै हाइमै थेराङबान राङला निर्दोषसित प्रमाणित लबरी परमेश्वर से वकिल्ला पेशेवर वकिल्ला आवश्यकता तामुला याङ चुमिदा प्रतिवादी वकिल बिमुला यसु ख्रिस याङला वकिल मुसुला रोनुन मुसुला जोसे याङला निर्दोषिता घोषणा लबरी याङला पाप आबा परमेश्वरला माछा सेमुला पहिलो युहन्ना दुई अध्यायला सात नला सेम निबा रोगदे नाइ एनी गदिदा ब्रिवचुतम परमेश्वर से कुलबा छातम आहिन तर नच्छाहेन सेन एनी गदिदा थामुबा परमेश्वर से कुलबा तहमनो नाइ ब्रिवन मुला चुतम एनी गदे से नच्छन थेब वचन हिन्ना रंग से लसुबा हरेक पाप यसुला कासी ख्रुबा मुला रंग याङला आबा परमेश्वरला नच्छा धर्मी मुसुला रंग से लसुबा हजीबा एन गेला कारण से आइन बा तसै जेखेन यसु से क्रुसरी राङला लागरी तिगा हासिल लसुजी थेग्याम राङ निर्दोष मुसुला रोमी तीन अध्यायला तेइस से चौबिस तिग्द विषम जम्म निगदेसी पाप लाबा मुला ओछे परमेश्वरला ग्रेन यालग्याम थारेङ ताब मुला तर परमेश्वर चा दया लाबा परमेश्वर हिन्न थेसी दया माया लसी मिगदेदा तिगै अकिन्न ओरङ्गोन्नोन रङ्दा सेम निबा मि शुभ मुला तिग्द विषम ख्रिस यसुसे जम्मन मिदा लागरी रङसेन सजाय नासी मिगदेदा पापला सजाय ग्याम हेबा मुला याङ बेनन्से हाइमा हाइमा गल्ती लामुला याङ च्यान्दोदा अपेक्षा छोना लाबरी असफलताला चुसे लामा खेनी गरेसी याङसी

किन मिगनोन परमेश्वर लङ्गापट्टि दोष उनमा शैतान र स्वर्ग्याम बेन बामुला प्रेरित शैतान दत्ति कडा परिसन लजी बामुला थेसे याङ फेरि झुटो आरोप कादे लगाव लबरी मिग देदा उक्सावन ताला हेने गरेसे याङ फेरि निरन्तर आरोप लगाव लमुला शैतान से याङदा विगत लबा गल्ती गरेर लागेरी दोषी महसुस लबरी यान माइमुला थे लगावला आरोपला कारण से लामा याङसे राङसे दोषी महसुस लमुला थिएन्दे आनन्द महसुस लबला सट्टा याङला तिङला तिङ दुख दुख देन निराशे पिङ मुला रङ चुलङ्ग महसुस तबरी थापिन्छुगो सन्दु प्रति रङसे लसिब हजी भई एन गल्ती द सचाप लबरी हम्बा प्रयास लसुगो थेलिचा थे विगदला पाप गदे द रो लुबा डाबी लसुगो रङ द परमेश्वर ल च्यासुब रूपरी च्याब्रे दन्छुगो जुन परमेश्वर से रङ द रोला जेला जे बा सन्तान ल रूपरी सृष्टि ल शुभ धार्मिकताला ज्ञान हिन्बा रङला विगत लिच्छ ठासुगो हेन्दे ख्रिस यसु

0: Helombo FM 89.6 MHz.
1: हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।